0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music. Back to back.
3: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
4: जो मंगना सी वो तो मिल गया

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन
5: दैट प्लेज
6: फुट टैपिंग म्यूजिक.
7: फजान 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: Hey, Adam.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में जियो, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793 2.
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरी है जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM, आई लव इट.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्दा मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: It's commercial time.
6: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
7: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
6: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गए ना यारा।
8: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
7: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
8: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
7: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
8: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
7: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
6: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
7: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
8: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
7: Peshawari Dera.
9: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
10: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
10: मुगल बिल्डर्स?
7: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
10: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
7: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
10: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
7: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस।
12: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी, एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन
5: दैट प्लेस
6: फुट टैपिंग म्यूजिक.
7: फजान 97.1 एफएम,
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 एफएम एंड ऐप.
9: इट्स कमर्शियल टाइम.
10: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी. अगर आपका नाइक कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट नॉटिंघम एंड 7680 ऑन संडे 2nd August 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM. मजीद मालूम के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pakistanforum.co.uk. टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज कॉल 07802988615. Only a limited number of slots available.
11: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
12: What happened? You look very happy.
13: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
12: Congratulations. That was very quick.
13: I was very lucky. I used the local visa experts.
12: Who helped you with the application?
13: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
12: Where is AMH solicitors based?
13: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
12: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
13: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
14: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को टीवा डायलॉग में खुश आमदीद। सो मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। वेल लिसनर, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरह से आप हमारी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह से हमें ट्यून कर सकते हैं, तो अब ज़रा बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जो कि ड्राइव कर रहे हैं या फिर हैं अपने डेस्टिनेशन के करीब या हैं इस वक्त सफ़र में, तो वो चाहते हैं कि उनका ये सफ़र, उनकी ये जर्नी या फिर उनकी डेस्टिनेशन बन जाए और भी ज़्यादा खूबसूरत। सो आप इसको भी खूबसूरत बना सकते हैं किस तरह से हमारी अच्छी अच्छी सी आवाज़ों को सुनकर। उसके लिए आप हमें फजा डैब के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। तो लिसनर्स, अभी हमारे लिसनर की रिक्वेस्ट है कि उनका पसंदीदा गाना शो में शामिल किया जाए। वैसे तो ये गाना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ वीकेंड सॉन्ग्स। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये एनर्जेटिक सा ट्रैक और ट्रैक के उस पर अगेन कंटिन्यू करते हैं यहीं से।

वेल लिसनर्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट सेगमेंट। जैसा कि है आप सभी को मालूम कि रीवा डायलॉग का हमेशा से फर्स्ट सेगमेंट रहता है थोड़ा मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से, साथ ही साथ पॉजिटिविटी से भरपूर। सो हम पूरी यही कोशिश करते हैं कि इस सेगमेंट में हम थोड़ी मोटिवेशन की बात करें, साथ ही साथ पॉजिटिविटी की बात हो, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डिफरेंट सिनेरियो चल रहा है जिसके तहत आप फील कर रहे हैं थोड़ा सा डीमोटिवेटेड, सो उसको थोड़ा सा कम किया जाए। सो आज का हमारा फर्स्ट कोट किस चीज से रिलेट कर रहा है, आइए आपसे शेयर करती हूँ। सो अवर फर्स्ट कोट इज ऑल अबाउट इनर स्ट्रेंथ एंड स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। सो द फर्स्ट कोट सेज फेड विस्पर्स टू द वुल्फ यू कैन नॉट विदस्टैंड द स्टॉर्म, द वुल्फ विस्पर्स बैक एंड आई एम द स्टॉर्म। आपने अक्सर देखा होगा कि जब जिंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर इस बारे में कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। होता है ना कि इंसान एक पॉइंट पर आकर इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है कि उसे लगता है कि दुनिया की जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो बस उसी के साथ हो रही हैं, बाकियों की लाइफ देखो कितनी अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है। सो दिस कोट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। वेल लिसनर्स, इस कोट को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगी कि आज का हमारा फर्स्ट कोट क्या कहता है, पर फिर वक्त के लिए हमें आई है एक अदद और मज़ीद सॉन्ग रिकमेंडेशन। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये अच्छा सा ट्रैक, एंड देन ट्रैक से वापसी पर यहीं से कंटिन्यू करती हूँ मैं।

चलिए तो लिसनर्स, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपने फर्स्ट कोड को. सो हमारा जो आज का कोड है, इसका बेसिकली मीनिंग कुछ यूँ है कि जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड. हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल या तूफान आता है, तो पहला ख्याल जो हमारे माइंड में आता है वो ये होता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर आई कॉन्ट हैंडल दिस. हम खुद को सबसे ज़्यादा कमज़ोर और वीक समझ बैठते हैं, लेकिन असली बात पता ये होती है कि जो इंसान की स्ट्रेंथ और विल पावर होती है, वो कभी भी इजी डेज में आपको नहीं दिखाई देती, वो आपको सबसे मुश्किल दिनों में ही दिखाई देती है. जैसे ही हालात बदलते हैं, सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, देन यू विल रियलाइज कि आखिर आप इसको किस तरह से टैकल करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे, और क्या आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल पाएंगे या नहीं. सो माई डियर लिसनर, जिंदगी जब भी कभी आपको झुकाने की कोशिश करे, तो मायूस होने के बजाय आप सर उठाइए और अपने इन हालात का सामना कीजिए, क्योंकि जिंदगी तो इंसान को ऐसे सिनेरियो में ले आती है जहाँ इंसान को ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, आई कॉन्ट टेक दिस. लेकिन कामयाब इंसान वही होता है जो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता. हालात जैसे मर्जी हों, वो अपने अंदर की विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमेशा 100 में से 90% यही कोशिश करता है कि जैसे तैसे करके मैं खुद ब खुद इन चीज़ों को मैनेज कर लूँगा. तो अपनी अंदर की ताकत पर यकीन रखें, आप हर मुश्किल से लड़ सकते हैं. ये था हमारा आज का फर्स्ट कोड. कैसा लगा आप सबको? आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कि अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सिनेरियो आया हो जहां आपको ये चीज़ बहुत ज़ोर से हिट कर रही हो कि सब आपके साथ ही बुरा हो रहा है, या आपको हर तरफ से ऐसा लग रहा हो कि आपकी ज़िंदगी के दरवाजे हो चुके हैं बंद, और उस तरह के सिचुएशन में फिर आपने क्या किया, किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल किया और किस तरह से खुद को टूटे नहीं दिया. सो इसके लिए 0115710971 है मेरा और आपका रابطے का नंबर, यानी कि ये वो नंबर है जिसके ज़रिए से कुछ आपकी दास्तान सुनी जाएगी और साथ ही साथ कुछ मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी. सो आप बिना झिझक इस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. अब जरा बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कोड की जानिब, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक अदर ट्रैक. ट्रैक से वापसी पर फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का सेकंड इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल प्लस ऐसा कोड जो कि आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक तब्दील कर देगा और ज़िंदगी में अच्छे अच्छे से पॉजिटिव पॉजिटिविटी को लेकर आएगा.

कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं और आप अपने अंदर वो हिम्मत पैदा कर सकते हैं। और दूसरा कोट इस चीज़ के हवाले से था कि कभी भी ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपने आज को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। सो वेल लिसनर्स, इनको मज़ीद कंटिन्यू करती, लेकिन फ़िलहाल शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो हमें आगे बढ़ना होगा, जाना होगा इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। फ़िलहाल के लिए चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें एंड स्टे ट्यून विद अस।

0: It's commercial time.
1: ओखाना काय के खुशबू गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौथी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
0: टर्न इट अप, रेडियो फाजा 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से सभी लिसनर्स को खुशामदीद। डीवा डायलॉग में आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो डीवा डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बात की थोड़ी सी मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, साथ ही साथ कम्युनिकेशन की। सो अब जरा बात करते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, यानी कि अब थोड़ी मोटिवेशन तो हो गई है, अब जरा बात करते हैं सभी डीवा से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक की जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आई नो फीमेल्स का ये फेवरेट टॉपिक होता है। और जब भी कभी फीमेल से बात की जाती है अबाउट स्किन केयर, अबाउट मेकअप, सो वो हमेशा यही कहती हैं कि उनके बस कहने को बहुत कुछ होता है, और डिटेल में वो डिस्कस करती रहती हैं इस तरह की चीज़ें, और कुछ इसी तरह से बातें करते करते करते वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ऐसे ही बहुत अच्छे से कुछ DIY मास्क, जो कि टोटली हैं ऑर्गेनिक, और साथ ही साथ जब आप उनको ट्राई करेंगे देन आपको पता चलेगा कि उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो इस बदलते हुए मौसम के साथ जहाँ हर चीज़ तब्दील हो रही है, सो हमारी स्किन को भी ज़रूरत होती है डिफरेंट तरह की स्किन केयर की, यानी कि हमें ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम अपने स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स को भी चेंज करें। सो आज मैं लेकर आई हूँ दो ऐसे DIY मास्क जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट करेंगे, और साथ ही साथ अगर कभी ऐसा होता है ना कि डेली बेसिस पर सन एक्सपोजर की वजह से स्किन बहुत ही ज़्यादा डल और टैन हो जाती है, सो उसे भी काफ़ी हद तक कम करेंगे।

सो द लिसनर्स, आपके साथ कम्प्लीटली शेयर करूंगी इंग्रेडिएंट्स, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक अदद अच्छा सा ट्रैक. सो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रैक सुनना है, तो उसको शो में शामिल किया जा सकता है. पर फिलहाल के लिए अभी जो मैं ट्रैक शामिल करने जा रही हूँ, ये मेरा फेवरेट ट्रैक है. और अगर बात की जाए इंग्लिश गानों की, सो ये गाना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है. आई मीन दुनिया में बहुत सारे गाने होंगे, लेकिन नो वन कैन रिप्लेस दिस. सो वेल लिसनर्स, ये तो आप ही बता सकते हैं कि ये गाना जितना मुझे पसंद है, क्या आपको भी उतना पसंद आता है या नहीं. उसके लिए आपको सुनना होगा ये ट्रैक. सो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक, और ट्रैक के उस पार फिर बात करेंगे थोड़ी सी ब्यूटी टिप्स के बारे में.

सो बात करते हैं फर्स्ट DIY मास्क की. सो इट्स कॉल्ड टर्मरिक एंड योगर्ट मास्क. सो बेसिकली ये मास्क किस चीज़ के लिए वर्क करता है, ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड अफेक्ट देता है, और अगर समहाउ सूरज की वजह से या फिर बहुत ही ज़्यादा बाहर आने जाने की वजह से अगर आपकी स्किन टैन हो चुकी है तो उसे भी काफ़ी हद तक कम करता है. सो ये मास्क स्किन टोन को इवन आउट करेगा, साथ ही साथ आपके डार्क स्पॉट्स को कम करेगा, क्योंकि योगर्ट स्किन को सॉफ्टली एक्सफोलिएट करता है, और साथ ही साथ जो टर्मेरिक है उसमें ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है. सो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स, और साथ ही साथ ये भी बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है. सो इस मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए बेसिक से कुछ इंग्रेडिएंट्स. सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज 1 टेबलस्पून प्लेन दही, साथ ही साथ 1 टीस्पून हनी, और साथ ही साथ एक पिंच आपको चाहिए हल्दी की. ये 3 ही इंग्रेडिएंट है जिनको आपने यूज करके ये मास्क रेडी करना है. अब किस तरह से इसे अप्लाई करना है उसका तरीका भी बता देती हूँ. सो इन सभी चीज़ों को आपने ले लेना है एक बाउल में और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. मिक्स करने के बाद आपने बना लेना है एक स्मूथ सा बैटर. सो आपने इसे फेस पर लगाना है और लगाकर आपने छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए, और 10 से 15 मिनट के लिए ये काफ़ी हद तक खुद से ड्राई हो जाएगा. सो आप इसको आराम से पानी से धो लें एंड देन आप फील करेंगे कि पहले ही यूज़ में स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश दिखेगी, और जो डलनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी. सो आपने यूज़ करना है इस मास्क को वीक में 2 से 3 मरतबा एंड यू विल सी के योर स्किन इज बिकम सो ब्यूटिफुल. अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा मास्क सूटेबल होता है और ऑयली स्किन के लिए. सो दिस मास्क इज़ सूटेबल फॉर बोथ स्किन टाइप. सो अगर आपकी स्किन ऑयली है देन तभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं. सो अब से आगे बढ़ते हैं आज के सेकेंड DIY मास्क की जानिब. सो इट्स कॉल्ड हनी एंड ओट्स मास्क. सो ये मास्क बेसिकली आपकी जो ड्राई और डल और सेंसिटिव स्किन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है. तो जितने भी हमारी लिसनर्स हैं, हमारी डीवाज हैं जिनकी स्किन टाइप ड्राई है, तो ये मास्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और बेस्ट है, क्योंकि ओट स्किन को सूथ करने में बहुत हेल्प करता है, और हनी जो है वो मॉइस्चर को लॉक करके रखता है. सो अब आपसे शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स. सो इस मास्क को बनाने के लिए सिंपली आपको चाहिए 2 टेबलस्पून पिसी हुई ओट्स, साथ ही साथ 1 टीस्पून रॉ हनी. बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि आप ओट्स हनी इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. अगर पेस्ट आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, सो आप इसके अंदर थोड़ा सा वार्म मिल्क शामिल कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि कंसिस्टेंसी रनी हो जाएगी, क्योंकि आपने मास्क रेडी करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कंसिस्टेंसी रनी हो, तभी आप इजीली उसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और तभी आपका फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. सो अब आपने अप्लाई कुछ इस तरह से करना है कि आपने फेस पर सर्कुलर मोशन में हल्का सा मसाज करते हुए इसे लगाना है. 15 से लेकर 20 मिनट तक लगे रहने देना है एंड देन फिर उसके बाद ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है. वीक में आप इसको 2 से 3 मरतबा यूज़ कर सकते हैं. सो ये ज़्यादा बेटर इसलिए है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ये आपकी स्किन में काफ़ी हद तक मॉइस्चर लेकर आता है. लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको फील होगा कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली लग रही है. सो इसी तरह का हमारे पास एक अदद और भी DIY मास्क है, जो कि बहुत ही अच्छा है और हर तरह की स्किन टाइप के लिए बेस्ट है. लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ क्यों ना शो में कोई गाना शामिल कर दिया जाए, क्योंकि हम काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं और म्यूज़िक भी साथ साथ चलता रहे तो अच्छा लगता है. सो आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है आप भी मुझे बता सकते हैं. तो फिलहाल के लिए प्ले करती हूँ ये सॉन्ग एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस सॉन्ग.

वेल लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले DIY मास्क की जानिब। सो इस मास्क का नेम है पपाया एंड लेमन मास्क। सो ये आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सो कहा जाता है कि पपाया में नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो कि डेड स्किन्स को रिमूव करते हैं, जबकि लेमन जूस जो है वो स्किन को इंटरनली ब्राइटन अप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो अब इसके इंग्रेडिएंट आपसे शेयर करती हूँ। आपको मालूम तो हो ही गया होगा कि इसमें बेसिक से दो इंग्रेडिएंट शामिल होंगे। द फर्स्ट इज़ लेमन एंड द सेकेंड इज़ पपीता। सो इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मैश पपीता, साथ ही साथ 1 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस। इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने मैश पपीता यूज़ करना है। सो उसके पल्प की वजह से एक अच्छा सा थिक सा मिक्सचर आराम से रेडी हो जाएगा। सो बस आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है, आराम से जेंटली 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर जब ये काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए तो आपने इसे कूल वाटर से वॉश कर लेना है। सो इस मास्क की सबसे बेस्ट बात यह है कि इससे कोई भी स्किन टाइप के लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर आपकी स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन, सो ये तीनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो, ग्लोइंग हो, तो सबसे पहले आप इन ब्यूटी टिप्स को तो साथ ही साथ अप्लाई करें, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि आप कंसिस्टेंसी से अप्लाई करें, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि आजकल इतनी बिजी रूटीन होती है तो हम एक मरतबा अप्लाई करते हैं और फिर भूल जाते हैं और इसी तरह से फिर बीच में काफ़ी गैप आ जाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत दिखे अंदर से बाहर से, सो उसके लिए ज़रूरत है कि आप जितना इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आप की ड्रेसिंग कैसी है, आप किस तरह के दिख रहे हैं, मेकअप अच्छा हो, एक्सपेंसिव हो, तो साथ ही साथ आपको अपनी स्किन की भी बहुत ही ज़्यादा लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, तभी आप अंदर से भी और बाहर से भी खूबसूरत दिखेंगे और प्रीटी लगेंगे। सो लिसनर्स, ये थे कुछ ब्यूटी टिप्स जो कि मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सभी लिसनर्स के साथ शेयर किया जाए। वैसे लड़कियों के साथ साथ लड़के भी इन ब्यूटी टिप्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्किन तो सभी की एक जैसी होती है और आई थिंक सो कि आपको भी ज़रूरत होती है स्किन केयर की, क्योंकि आप लड़कियों की नस्बत ज़्यादा घर से बाहर जाते हैं, सन एक्सपोजर भी आपका ज़्यादा होता है। सो आपको भी स्किन केयर करनी चाहिए, सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए और इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि आप धूप को अवॉइड करें। वेल लिसनर्स, लाजमी ट्राई कीजिएगा इन ब्यूटी टिप्स को और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि आपको ये DIY मास्क कैसे लगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के मजीद अच्छे अच्छे ब्यूटी टिप्स आप सभी के लिए लेकर आती रहूं, सो उसके लिए 01157100971 इसके थ्रू लाजमी बताइएगा। सो फिल वक्त के लिए शो में शामिल करते हैं एक अदद अच्छा सा ट्रैक जो कि आपके इस मूड को कर देगा चेंज। सो सुनने के बाद बताइएगा कि ये ट्रैक आपको कैसा लगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का द स्पाइस किचन सेगमेंट, जहां पर मैं लेकर आई हूं आपके लिए आज भी एक बहुत ही अच्छी सी डिफरेंट सी फ्यूजनल सी रेसिपी। सो उसके लिए पहले सुनते हैं ये ट्रैक।

वेल लिसनर्स, इस वक्त वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाए एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आप सभी की मेजबान ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो। और तकरीबन सुनते सुनते हो चुका है आपको और मुझे साथ में एक घंटा से भी ज़्यादा। सो बस अब थोड़ा सा ही वक्त रह गया है हमारे इस सफ़र को ख़त्म होने में, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बताती चलती हूँ 01157100971 ये है मेरा और आपका रबते का नंबर। यानी इस नंबर के ज़रिए से आप मुझसे वो सभी बातें कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं किसी से, या फिर आप मुझे अपने दिल का हाल सुना सकते हैं। सो अगर है आपको कोई भी उलझन या फिर है आप किसी भी कश्मकश का शिकार, सो डू लेट मी नो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक बहुत ही अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस दूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का द स्माइल किचन, और हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ अपनी सभी डिवाइस के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही अलग और बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी। सो हम बहुत ही ज़्यादा एशियन कॉन्टिनेंटल और हर तरह की रेसिपीज ट्राई करते हैं, सो आज ट्राई करते हैं एक ऑथेंटिक इटालियन रेसिपी। सो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेगेटी कार्बोनारा। सो ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर और आसान सी पास्ता रेसिपी है जो बिल्कुल जिसमें बिल्कुल भी कोई क्रीम यूज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी होती है, और ये इटली के लोकल्स में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम भी इसको ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे लिसनर्स में से भी बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हों जो कि इटली से बिलोंग करते हों। सो दिस रेसिपी इज़ फॉर यू। सो द लिसनर्स, बिना टाइम वेस्ट किए आपसे शेयर करती हूँ इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से अपने काम का छोड़ दीजिए और कॉपी, डायरी या फिर नोटबुक रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी के मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स, और अगर आपने जल्दी से नोट नहीं किए तो आप मिस कर देंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। सो जब तक आप अपनी नोटबुक या डायरी रेडी करते हैं, तब तक हम सुनते हैं एक अदद अच्छा सा ट्रैक। सो इस ट्रैक के उस पार कंटिन्यू करते हैं इस रेसिपी को।

डियर लिसनर्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्पेगेटी 200 ग्राम्स, साथ ही साथ हमें चाहिए अंडे एक से दो अदद, चीज 50 ग्राम्स, साथ ही साथ आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ या फिर चैटर चीज़, कोई भी हो, इट्स टोटली अप टू यू एंड इट्स टोटली योर चॉइस। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है मीट 100 ग्राम चिकन क्यूब्स, जिसको आप स्मोक कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि आप चिकन ही यूज़ करें क्योंकि चिकन इजीली कुक हो जाता है, प्लस मेजॉरिटी को चिकन पसंद होता है, सो इस वजह से। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, साथ ही साथ ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। सो ये कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि हम सभी के घरों में अंडे मौजूद होते हैं, चीज़ भी मौजूद होती है, साथ ही साथ स्पाइसेस इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इटालियन रेसिपीज़ में स्पाइसेस का लेवल हमेशा से कम होता है। सो हम जस्ट ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ नमक। सो ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स, आई होप आप सभी ने नोट कर लिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपसे कुछ मिस हो गया हो या कुछ समझ आने में दिक्कत रह गई हो तो उसके लिए आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी आपको बता दूंगी। सो ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स, अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके फुल प्रोसीजर की जानिब। सो सबसे पहले एक बड़े पतीले में आपने पानी को कर लेना है अच्छे से गर्म, फिर उसमें ढेर सारा नमक शामिल कर देना है। जब पानी उबलने लगे तो वक्त आ चुका है कि आप इसके अंदर ऐड कर दें स्पेगेटी।

सो आपने क्या करना है कि पास्ता को 100% कुक करने के बजाय बिल्कुल 90% बॉईल करना है, ताकि वो बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर कुक ना हो और ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगे. सो आपने बस इसको 90% तक कुक करना है. कुक करने के बाद बस चूल्हे को कर देना है बंद. सो अब आपने इसके पानी को अलग से साइड पर रख देना है, साथ ही साथ आपने पास्ता को अलग से निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देना है. अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब, यानी कि जैसा कि हमारे पास्ता का नेम है स्पेगेटी कार्बोनारा. सो अब हम बनाएंगे कार्बोनारा सॉस. सो जब तक पास्ता बॉयल हो रहा हो तब तक आपने एक बाउल में एक पूरा अंडा शामिल कर देना है, साथ ही साथ दो अंडों की जर्दी, पिसी हुई चीज़ और काली मिर्च, साथ ही साथ फोक की मदद से इन सबको आपने अच्छे से फेंट लेना है. ये एक बहुत ही अच्छा सा थिक सा आपका पेस्ट बन जाएगा. बस अब आपने इस पेस्ट को बना के साइड पे रख देना है और आगे बढ़ना है अपने स्टेप नंबर 3 की जानिब. सो स्टेप नंबर 3 में हम एक पैन लेंगे जिसपे थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल गर्म कर लेंगे. उसी में हम ऐड करेंगे अपना मीट और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो. 3 से लेकर 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक वो बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना दिखे. फिर चूल्हा बंद कर देंगे और इसे निकाल कर साइड पे रख लेंगे. बनाना चाहिए एंड सेकेंडली कि कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट तरह की सिचुएशंस तो जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन असल इंसान तो वही होता है जो अपने आज में जीता है, ना कि अपने कल की फिक्र में रहता है. सो इसी खूबसूरत सी अच्छी सी बात के साथ ही शो को करते हैं यहीं पर इख्तिताम पज़ीर. आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ. तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में हमें याद रखना है. और अब मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त. जाते जाते आपके लिए एक अच्छा सा गाना प्ले करती चलती हूँ. आप मुझे बताइए आपको किस तरह का गाना सुनना है, तो कुछ ऐसा ही सॉन्ग प्ले कर देती हूँ आप सबके लिए. सो जी लिसनर्स, मुझे मिल चुका है ये गाना, तो ये मैं प्ले करने जा रही हूँ. जाते जाते आप इस गाने को एंजॉय करें. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.

अरे उठो नहीं, उठो नहीं, उठो नहीं, लेटे रहो हा? जो भी हुआ लेकिन तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो।

देख रही माँ, मेरे लोग उस लड़के को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। तेरे लिए बेहतर है कि तू खुद बता दे। तेरी यही खामोशी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। मैं तुझे उठाकर उसी जगह वापस भेज दूंगा जहां से खरीद कर लाया था एक दिन। तेरी सही जगह वही है, वहां आशिकों की कमी नहीं पड़ेगी तुझे। एक ढूंढेगी हजार मिलेंगे, और वो सब मिलके तेरा इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा किसी और से इश्क करने के लायक नहीं रहेगी तू। आज से तू उसी दिन का इंतजार कर।

मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 FM।
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
4: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
5: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
4: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
5: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
4: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी, एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, excelsinnawab.co.uk.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
8: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
7: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
8: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
7: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
8: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
7: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
8: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
7: टेस्ट भी वाइब भी।
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
10: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
12: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: लास्ट कॉल बाकी है मेरे पास, आखिरी कॉल।
1: कल मिलते हैं।
0: क्यों मैं खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता।
2: वेलकम बैक, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा FM 97.1 और मैं हूं मोहम्मद हुज़ैफ़ा हैदर। आज के प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा वक्फ करें एहसान मंदी के नाम। क्या हमने कभी दिल से अपने वालदैन का शुक्रिया अदा किया? क्या हमने अपने असातिज़ा, दोस्तों या उन लोगों को याद किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया? शुक्रगुजारी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ये खूबसूरत रवैया है। जो शख्स दूसरों की नेमतों को पहचानता है अल्लाह ताला उसकी नेमतों में मजीद बरकत अता फरमाते हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, किसी को हौसला दें, किसी की बात को गौर से सुने, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। यकीन जानिए छोटे छोटे काम मुआशरे को खूबसूरत बना देते हैं।

अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, किसी को हौसला दें, किसी की बात गौर से सुने, हो सकता है आपकी बात उसके लिए जिंदगी को जीने का सबब बन जाए। दोस्तों, ऐसी दुनिया में हर शख्स किसी न किसी परेशानी, मसरूफियत या दबाव का शिकार है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है और वो है इंसान की मुस्बत सोच। मुस्बत सोच अपनाइए। बात करते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद मुस्बत सोच के हवाले से। हमारे साथ जुड़े रहिए फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेलकम बैक टू फजा 97.1 FM। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। बात चल रही थी मुस्बत सोच की,

याद रखिए, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कितनी ही रात लंबी क्यों ना हो, सुबह ज़रूर तुलू होती है। इसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल दिन भी हमेशा नहीं रहते। अगर आज आप किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं तो हिम्मत ना हारिए, अपने रब पे यकीन रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए और अपने वालदैन की दुआओं को अपनी ताकत बनाइए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का वो ख्वाब क्या है जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। अपना जवाब अभी हमें इरसाल कीजिए, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा और इंशाल्लाह इन पर बात भी करेंगे। और एक बात, अगर आपने अभी तक इस हमारे प्रोग्राम को शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मुस्बत पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलिए अब एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं क्योंकि आज़ादी का महीना भी चल रहा है। तो फसल 97.1 FM अपने लिसनर के लिए एक नगमा प्ले करता है, फिर वापस आकर आपके कमेंट्स पे शामिल करेंगे और गुफ्तगू का आगे बढ़ाएंगे।

एक और खूबसूरत बात यह कि हम अक्सर अपनी खुशियों को बड़ी कामयाबियों से जोड़ देते हैं, हालांकि हकीकी खुशी छोटी छोटी नेमतों में भी होती है। वालिदैन की दुआ, दोस्तों की मुखलिसी, सेहत, सुकून, नींद और दो वक्त की रोटी, ये सब ऐसी नेमतें हैं जिनकी कदर हमें हमेशा करनी चाहिए। अगर आज आपके पास कुछ लम्हे फारिग हैं तो अपने वालिदैन के साथ बैठें, किसी अजीज को फ़ोन करें, किसी नाराज दोस्त को मना लें या किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। यकीन मानिए, ये एहसास दिल को ऐसा सुकून देता है जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। अब वक्त है खूबसूरत से गीत का। आप गाने से लुत्फानंदोज हों, हम मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो फजा FM 97.1।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972 ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: यू आर प्लेइंग फैजान 97.1 FM।

एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम बैक। इस वक्त आप 90s के दौर के गाने सुन रहे हैं, चूंकि हम आप आपका मूड ट्विस्ट करते हैं और आपको नए गाने सुनवा देते हैं। सुनते रहिए फजा 97.1 FM। ज़रूर आपने सोचा होगा कि एक मरतबा फिर आप पुराने गाने प्ले कर चुके हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हम आपके मूड के मुताबिक हमारी कुछ फरमाइशें इस वक्त हमारे इनबॉक्स पे पड़ी हैं। चलिए सुनिएगा और सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

एक खूबसूरत नगमा आपने सुना रेडियो फ़ज़ा FM 97.1 पर। एक बार फिर मैं आपका मेज़बान मुसफ़ा हैदर आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, सफ़र में होंगे, दफ्तर में होंगे, घर में अहले खाना के साथ होंगे या शायद चाय का कप हाथ में लिए हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे। आपकी मोहब्बत ही हमारी असल ताकत है और यही ताल्लुक़ हर रोज़ हमें आप तक पहुँचने का हौसला देता है। दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर नई सुबह इंसान को एक नया मौका देती है। कल अगर कोई गलती हुई, कोई फैसला दुरुस्त ना हो सका, कोई ख्वाब अधूरा रह गया या किसी बात पर दिल टूट गया, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कहानी ख़त्म होगी। ज़िंदगी का हुसन यही है कि हर तुलू आफ्ताब के साथ अल्लाह ताला हमें एक नया सफ़ा अता फरमाता है, जिस पर हम अपनी किस्मत को मेहनत, इखलास और अच्छे किरदार से दोबारा लिख सकते हैं। अक्सर हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें अपनी नियमतें दिखाई नहीं देती। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप सेहतमंद हैं, अपने पैरों पे चल सकते हैं, अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, अपने कानों से अपने प्यारों की आवाज़ सुन सकते हैं, तो यकीन जानिए आप दुनिया के लाखों लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हैं। इंसान की फितरत है कि जो उसके पास है उसकी कदर कम करता है और जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। हालाँकि सुकून ख्वाहिशों के पूरा होने से नहीं बल्कि शुक्र अदा करने से मिलता है। मेरे नौजवान दोस्तों, अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि हालात आपके मुताबिक नहीं, वसाइल कम हैं या रास्ते बंद नजर आते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं उनमें से अक्सर ने अपनी कामयाबी का सफर सिफर से यानी जीरो से शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनाया बल्कि अपनी ताकत बना लिया। वो घिरे भी, नाकाम भी हुए, लोगों ने उन पर तनकीद भी की, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया।

हमें दूसरों की कामयाबी देखकर हासिल करने के बजाय अपनी मेहनत पे तवज्जो देनी चाहिए। हर इंसान का वक्त अलग होता है, हर शख्स का इम्तिहान अलग होता है और हर एक का रिस्क भी अल्लाह ताला ने अलग लिख के रखा है। इसलिए मुवाजना दूसरों से करने के बजाय अपने साथ कीजिए। अगर आज आप कल से बेहतर इंसान हैं तो यकीन जानिए आप तरक्की कर रहे हैं। और एक बात जो शायद हम सबको याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बाज़ औक़ात एक जुमला बरसों के ताल्लुकात को ख़त्म कर देता है, जबकि एक अच्छा जुमला अजनबी को भी अपना बना देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी ज़बान से हमेशा खैर की बात निकले, हौसला निकले, मोहब्बत निकले और दुआ निकले। सामीन, ज़िंदगी की मसरूफियात में अपने रब से ताल्लुक़ को कमज़ोर न होने दीजिए। चंद लम्हे दुआ के लिए, चंद लम्हे कुरान करीम की तिलावत के लिए और चंद लम्हे अपने आमाल का जायज़ा लेने के लिए ज़रूर निकालिए। यही वो लम्हे हैं जो दिल को सुकून देते हैं, इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। इंशाल्लाह गुफ्तगू का ये खूबसूरत सिलसिला भी जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त और एक और खूबसूरत नगमे का। आप कहीं मत जाइए, रेडियो फजा एफएम 97.1 सुनते रहिए। मैं हूँ आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा हैदर और वक्फे के बाद फिर हाजिर होऊंगा कुछ और खूबसूरत बातों, मुस्बत ख्यालात और दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू के साथ। इसलिए सुनते रहिए फजा 97.1 एफएम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2

0: ठहरी है जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

हेलो नॉटिंघम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और एक प्यार भरा सलाम मेरे तमाम सुनने वालों के नाम। मैं हूं आपका आरजे मौसम और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम एंड आल्सो डैब। आप ज़िंदगी के किसी भी सफ़र में जा रहे हैं या किसी भी सफ़र में हैं, उम्मीद करता हूँ आप हरियत से होंगे, हर हरियत से ही होंगे तो हमें सुन रहे हैं ना।

इसके अलावा हमें आप ऐप स्टोर पे से या एंड्रॉयड ऐप से भी सुन सकते हैं, ऐसे इलाके जिनमें आप हमारी आवाज़ ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही, तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM। ये ऐप दोनों ऐप स्टोर और iOS और एंड्रॉयड पे दोनों पे अवेलेबल है, और इस ऐप का आइकन जो है वो लोगो पर्पल कलर विद गोल्डन माइक और नीचे लिखा होगा फ़ज़ा, रेडियो फ़ज़ा। डाउनलोड कर लेना और विदाउट लॉगिन आप जस्ट वन क्लिक पे हमें सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूं कि एक आरजे के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने होने का एहसास हमें देते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और अपने जुड़े रहने का तरीका भी आपको पता है, और जुड़े रहने का तरीका ये है कि आप हमें मैसेजेस करते हैं।

आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास होने जा रहा है, और खास होने की वजह भी आपको बताता चलूँ कि ये टॉपिक मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो हमें मुझे रेगुलर लिसनर जो सुन रहे हैं उनको पता है कि जो मेरा टॉपिक हमेशा वो होता है जो मैं अपनी प्रैक्टिकली जो उसको परफॉर्म करके या प्रैक्टिकली होता है जिस तरह मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, या किसी दोस्त यार की कोई ऐसी बात जो मुझे याद आ जाए या उन्होंने जो बात कोई कही हो और उससे मैं टॉपिक निकालता हूँ, हमेशा इसी तरह होता है।

साथ साथ आपकी फरमाइशें भी पूरी की जाएंगी और साथ साथ आपको प्यारे प्यारे गाने भी सुनाए जाएंगे ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, और आपका दिन अगर अच्छा नहीं भी गुजरा तो कोशिश करेंगे कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए। हम भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर आपकी फरमाइश के मुताबिक मुस्कुराहट आए तो आप अपना पैगाम हमें ज़रूर भेजिए, अपना नाम और अपने शहर का नाम हमें व्हाट्सअप कीजिए। और व्हाट्सअप नंबर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 01157100971। बातें तो होती रहेंगी, साथ साथ आपको आज के प्रोग्राम का पहला गाना सुनाते हैं, और आप सुनाते नहीं हैं बल्कि लगाते हैं, और ये भी एक फरमाइश ही है और उनका नाम तो नहीं लूँगा पर स्पेशल फरमाइश है और उनके लिए हम ज़रूर प्ले करेंगे और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक प्यारे से गाने के साथ। और इसके बाद वापस आइएगा, कहीं ना मत जाइएगा और हमारे साथ ही रहेगा। हम इसके बाद अपने प्रोग्राम का आज का टॉपिक रिवील करेंगे, और आज का टॉपिक भी बहुत एक मैं कहता हूँ सरप्राइजिंग टॉपिक होगा, और वो टॉपिक भी ऐसा हमेशा की तरह होगा जिसमें आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये सोचेंगे या सोचने पर मजबूर करेगा कि ये बात तो हमारे साथ ज़रूर है।

सो एंजॉय करिए ये सॉन्ग, और मैं सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ उन तमाम लिसनर को और या उन तमाम ड्राइवर हजरात को जो इस वक्त मुझे अभी अभी ट्यून किया और उस फजन 97.1 एफएम की तरफ से। पहले मैं आपको वेलकम कहता हूँ और बाद में आपको कहता हूँ कि ये सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है।

वंस अगेन वेलकम बैक। और एक प्यारा सा सॉन्ग आप सुन रहे थे और ये सॉन्ग स्पेशल डेडिकेशन थी उन तमाम ड्राइवर हजरात को जो इस वक्त अपने कैब चलाते हुए हमें सुन रहे थे और अभी भी सुन रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि आप भी किसी की ना किसी के सपने में चले गए होंगे या आपने भी किसी ना किसी को याद किया होगा जो आपके सपने में आए। और कुछ सॉन्ग्स हमेशा ऐसे होते हैं कि जिनको हम सुनते ही ये चीज़ नोट करते हैं कि यार ये चीज़ हमारे भी जहन में आ गई, या किसी सॉन्ग कोई ऐसा सॉन्ग हमेशा होता है जिसकी लाइन्स ऐसी होती हैं जो आपके जहन में किसी ना किसी की याद ताज़ा करती हैं। जिस तरह के ये सॉन्ग था कि सपने में आवें, और सपने में आने का कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर होगा जिस आप कहते होंगे कि कदे मेरे सपने जावे ना। हर कोशिश किया करो कि उसको सपने में लाओ जो आपको मिल सके।

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड आल्सो डैप प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम। मैं आपके मैसेजेस ही पढ़ रहा था और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों ने और काफ़ी सारे लिसनर्स ने हमें एक प्रॉपर ट्रू गैस किया, और एक मैं कहता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी और उम्मीद से बढ़कर ये गैस किया गया है, और मैं इस चीज़ का आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपने होने का एहसास भी दिया और हमारे शो का जो आज का टॉपिक है वो भी ट्रू गैस किया। और मैं आने वाले कुछ देर बाद और कुछ आगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपके नाम पे एक प्यारा सा सॉन्ग भी डेडिकेट करूँगा, और आपको भी अगर किसी सॉन्ग की कोई स्पेशल फरमाइश है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। सो आज का जो टॉपिक है वो है वो आप बताएं, आप टाइम टाइम टाइम टाइम क्या हो सकता है। सो आई रिवील द टॉपिक, आज का टॉपिक है सोशल मीडिया। अच्छा लिसनर्स, आप ये सोच के बताएं कि सोशल मीडिया ऐसा क्या है कि इसमें से पूरा एक, मैं कहता हूँ बातों से बातें निकलती जाएं और दो घंटे का प्रोग्राम मैं हमारी इन बातों के लिए थोड़ा होगा, और आपको ऐसी ऐसी इन इस चीज़ के नफ़ा या नुकसानात होंगे जो आपकी ज़िंदगी से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते होंगे, और आप इस चीज़ को ये मैसेजेस में हमें बताएंगे कि वाकई ये चीज़ आपसे रिलेट करती है या नहीं करती।

अच्छा, हम आज बात करेंगे कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का किस तरह हिस्सा बना और सोशल मीडिया के फ़वाद क्या हैं, सोशल मीडिया के नुकसान क्या हुए, सोशल मीडिया ने हमें अपनों से दूर किया है या अपनों के पास लाया है, और इसके अलावा आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे और आपकी राय भी लेंगे कि आपकी नज़र में सोशल मीडिया ने दुनिया में फ़ायदा दिया या नुकसान दिया। मुझे लगता है कि नुकसान भी दिया और कुछ चीज़ों में बहुत सारा फ़ायदा दिया। आपको क्या लगता है ये हमें ज़रूर बताइएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ कि जब मेरी सुबह खुलती है ना, तो मैं सबसे पहले उठ के अपना मोबाइल फ़ोन उठाता हूँ और मोबाइल फ़ोन पे क्या करता हूँ, मोबाइल फ़ोन पे सबसे पहले अलार्म को बंद करता हूँ, और इसके अलावा मैं अपनी व्हाट्सएप पे मैसेजेस को चेक करता हूँ। मैसेजेस चेक करके फिर मैं दूसरा काम करता हूँ। आप क्या करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरी तरह कुछ लिसनर्स भी ये चीज़ सोच रहे होंगे कि मैं भी सुबह तकरीबन यही काम करता हूँ। कुछ लोग को व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करना सबसे पहले पसंद है, कुछ को फेसबुक चलाते हैं, कुछ टिकटॉक या कोई भी सोशल मीडिया ऐप जो आपको लगे कि ये ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में वो चलाते हैं। पर दोस्तों, कभी आपने सोचा कि हमारी पहली ज़िंदगी इस तरह नहीं थी, हमारे बड़ों की ज़िंदगी इस तरह नहीं थी। जब हम छोटे थे तो हमने नोट किया कि हमारे बड़े इस तरह के नहीं थे, और अम्मी की आवाज़ ही अलार्म होता था, अम्मी की आवाज़ ही कहते थे कि आप उठ जाओ, टाइम हो गया है। जैसे कि हम छोटे होते थे तो पहली ज़िंदगी इस तरह थी कि हमारे घर में एक फ़ोन होता था, किसी को कॉल करनी है तो उस एक फ़ोन से ही की जाती थी, और इसके अलावा अगर रिश्तेदारों के हाँ कोई हरियत का पैगाम भेजाना होता तो ख़त के ज़रिए आता था। हमारे घर भी मुख्तलिफ ख़त आते थे, और इसके अलावा अगर बात की जाए और तस्वीरों की, तो अभी आपके फ़ोन में गैलरी बड़ी भरी पड़ी होती है तस्वीरों की। और पहला दौर वो था कि जिसमें एल्बम में सेव की जाती थी, और कोई भी मेहमान या अपने बच्चों को इवन के कोई ऐसे जब हम मिल बैठ के बैठते थे तो अपने एल्बम कोई पुराना निकाल लेते थे तस्वीरों का और वो देखा करते थे। और आज वो दौर है कि आप अपनी इवन के गूगल जो है आपको आपकी 10 साल पुरानी भी याद ताज़ा करके खुद बताता है, नोटिफाई करता है कि आपकी 10 साल पहले ये तस्वीर आपने खींची थी और आप कैसे हैं ये दिखाएं देन एंड नाउ। इंटरनेट से आने से बहुत सी ज़िंदगी बदल गई है और बहुत सी ज़िंदगी फास्ट हो गई है, और मैं कहता हूँ कि इंटरनेट के आने से कारोबार के मौके बढ़े हैं, और भी टेक्नोलॉजीज़ में तरक्की आई है, और बहुत सी चीज़ें मैं कहता हूँ बढ़ी हैं, और जिसका नाम भी काफ़ी हैं। मैं अगर इनको गिनवाने बैठ जाऊँ तो ये शो इस चीज़ के लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये शो आज का जो टॉपिक है इतना बड़ा है कि इसको अगर बातें करने में आए तो ये 2 घंटे भी हमारे लिए बहुत थोड़े हैं। अच्छा दोस्तों, अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, इसके अलावा भी बात की जाए मोबाइल की, तो हम अगर सोशल मीडिया के साथ साथ हमें इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि हम अपने घर, हम अब यूके में हैं जो परदेसी एशियन कंट्रीज़ के या अदर किसी भी कंट्री में जो हमारी बात ये समझ सकते हैं, हमारी ज़ुबान समझ सकते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिस तरह एक व्हाट्सअप ऐप है, तो उससे हम दुनिया में के किसी भी मुल्क में हैं, चाहे वो भारत में हमारे कोई अपना है या किसी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, आप उनसे चंद लम्हों में वीडियो कॉल के ज़रिए उनको देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट कर सकते हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख सकते हैं और खुद की दिखा सकते हैं, और एक वॉइस नोट के ज़रिए आप पैगाम पे पहुँचा सकते हैं, और पिक्चर्स भी इवन और वीडियोज़ और ऐसी मैं कहता हूँ कि जिद्दत आ गई है कि नई कोई ना कोई चीज़ आ रही है, और जिस तरह के आजकल एआई का दौर है और एआई ने और ज़िंदगी को तेज़ कर दिया, मैं कहता हूँ। पर इसके कुछ नुकसान तो होते हैं पर फ़ायदा भी बहुत सा है। आजकल स्टूडेंट्स को वो लाइब्रेरी में किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, एक क्लिक पे, एक मैसेज पे आपको हर एक चीज़ मिल जाती है।

अच्छा, इन बातों के दौरान मेरे जहन में एक बात पैदा हुई है कि क्या वाकई ही इस सोशल मीडिया ने हमें अपनों के करीब किया है या अपनों से दूर किया है। मेरी नज़र में तो सिर्फ स्क्रीन के करीब किया है, जबकि अपनों से तो दूर कर दिया है। आपके क्या नज़र में क्या है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हम आपके मैसेजेस को, प्यार भरे मैसेजेस को ज़रूर अपने प्रोग्राम के जीनत में बनाएंगे। मैसेज करने का तरीका वही पुराना है, आपने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि मैसेज पढ़ते हुए आपका नाम और आपके शहर का नाम ज़रूर लिया जाए। और अपना पैगाम, अगर आपकी कोई फरमाइश हुई वो भी आप बताइएगा, और इसके अलावा अगर आपका कोई गाना सुनने का मूड बन रहा है वो भी बताइएगा, और या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई सॉन्ग वो भी बताइएगा। बनाना चीज़ आपके लिए हाजिर है।

खैर सोशल मीडिया की तो ताकत ही एक अलग ताकत है, और जिस तरह इसने हमें अपनों के करीब किया है और फिज़िकली हमें अपनों से दूर भी किया है। मैं देख रहा होता हूँ अक्सर, मैंने नोट किया कि हम अब जब भी किसी दोस्त यार से भी, इवन कि अभी इधर यूके में भी हम अगर किसी दोस्त यार के रूम में या उनसे मिलने जाते हैं या किसी फैमिली अगर इधर जिसकी भी है या वो एक रूम में बैठे हों, तो सबके पास आप बातें नहीं होती बल्कि फ़ोन हाथ में होते हैं और फ़ोन ही यूज़ कर रहे होते हैं वो। इवन के अब वो लम्हात नहीं रहे कि जब सारा ख़ानदान एक जगह बैठता था तो एक दूसरे से गप्पें लगती थी, एक दूसरे से हंसी मजाक की बातें होती थी, किस्से शेयर किए जाते थे, कोई कहानी सुनी जाती थी। अब क्या होता है कि हर एक बंदा एक साथ बैठा होता है लेकिन हर एक के हाथ में फ़ोन है और फ़ोन यूज़ कर रहा है। कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, कोई टिकटॉक यूज़ कर रहा है, कोई यूट्यूब यूज़ देख रहा है, कोई ड्रामे देख रहा है, कोई अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहा है, पर बात नहीं हो रही हालांकि बंदे बिल्कुल साथ बैठे हैं। खैर इसके फ़ायदे तो आपने सुने और इसके नुकसान भी हैं, और जो हम अपने कुछ देर बाद अगले हिस्से में ही हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग मैंने प्लेलिस्ट में ऐड

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM, जो है हर जगह हर वक्त सिर्फ आपके लिए। और मैं हूं आपका होस्ट आरजे मौजम, और आज प्रोग्राम का नाम है ट्राइब टाइम। बात हो रही थी सोशल मीडिया की और नुकसान और फायदे की। फायदे तो हमने डिस्कस किए, और साथ साथ टाइम इसलिए लगा कि मैसेजेस आपके देख रहा था, स्पेशल मैसेजेस देख रहा था उनके, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम के टॉपिक का आगाज करने से पहले ही नाम बता दिया था। और इसमें स्पेशल मैसेज शामिल करूंगा उनका, जो हाँ मिस अस्मा ने मैसेज किया था कि मैं सुबह उठते ही अपना सोशल मीडिया यूज़ करना करती हूँ, और आपकी तरह ही या मैं भी पहले सबसे अपना अलार्म बंद करती हूँ, और इसके अलावा मैं फिर क्या करती हूँ, व्हाट्सएप मैसेज चेक करती हूँ, और सबसे पहले घर कॉल करती हूँ। और आपने फरमाइश भी की है एक सॉन्ग की, और सॉन्ग का नाम है जीने लगा हूँ। जी जीने लगा हूँ, बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और मैं कहता हूँ, मैंने बहुत बार ये मूवी देखी है, रमैया वस्तावैया, और अरिजीत सिंह की आवाज़ मुझे वैसे ही प्यारी लगती है, और वो फेवरेट सिंगर भी हैं, और उनकी आवाज़ भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा किसकी आवाज़ है, खैर फीमेल की तो मुझे नाम अब भूल गया है, क्योंकि कुछ अरसा हुआ ये भी गाना सुने हुए। चलें सुनते हैं और आपके साथ इंजॉय करते हैं, और जिन जिन ने ये गाना पसंद किया तो उनको भी ये गाना डेडिकेट करता हूँ एडवांस में, और जिन जिन को ये फिल्म भी अच्छी लगती है उनको भी डेडिकेट करता हूँ। खैर आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, और प्लीज़ आप लिटल बिट अप द वॉल्यूम एंड डाउन द लिटल बिट योर विंडो।

अच्छा अस्मा, आपने ज़रूर बताना है कि आप ये सॉन्ग किसको डेडिकेट करना चाहती थी या अपने लिए फेवरेट सॉन्ग ये लगवाया है। और स्पेशल डेडिकेशन फॉर यू एंड ऑल लिसनर हु लाइक दैट फिल्म एंड आल्सो दैट वन सॉन्ग।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम एंड आल्सो डैब विद आरजे मौसम और प्रोग्राम का ड्राइव टाइम। आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का सिलसिला जारी है, और इस वक्त जो नए लिसनर मेरे साथ शामिल हुए हैं उनको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं, और फजा 97.1 एफएम की फैमिली का हिस्सा बनने पर आपको अगेन वंस अगेन वेलकम कहता हूं। अपने होने का एहसास आप दिला ही रहे हैं, और साथ साथ आप अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं, और आपकी फरमाइशें भी पूरी की जा रही हैं, और मुख्तलिफ फरमाइशें आ रही हैं। मैं कमर्शियल ब्रेक के दौरान ही आपके मैसेजेस पढ़ रहा था। आज तो मैं कहता हूँ कि या तो आज का मौसम की हाल ऐसा है, या आपके मूड का हाल ऐसा है कि आज तो गानों की फरमाइशें आ रही हैं, और गाने भी वो जो मैं कहता हूँ कि दिल को छू जाएँ। और एक अच्छी बात यह है कि मेरे लिसनर्स और मेरी जो प्लेलिस्ट के गाने हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। धमाकेदार से गाने सुनेंगे और साथ साथ बातें भी करेंगे। हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया के नुकसानात अभी मैं आपको डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा, और आपने भी बताना कि आपकी नज़र में ऐसे नुकसानात कौन से हैं जो हो सकता है कि मैं बात में ना कह सकूं, और हो सकता है कि आपकी वो बात सुन के मुझे भी पता लगे कि हाँ ये भी एक नुकसान था। दोस्तों, हमेशा हर एक चीज़ का दो ही रुख होते हैं। जिस तरह के अगर आप बात करें एक चाकू की, तो चाकू के साथ हम फ्रूट भी काटते हैं और कुछ और भी काटते हैं। हर ये एक नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, और आप इसके आपके माइंड पर है कि आप इसको किस जगह यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हमारे नज़र में एक चाकू ही है। आप अगर इसको सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करना शुरू करें तो आपके लिए ये नुकसानदेह है। बज़ाहिर आपको उस चीज़ का मज़ा आ रहा होगा, पर मेरी नज़र में वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जब आप कभी भी मोबाइल यूज़ करने का ज़हन बने, या अगर मिसाल के तौर पे अगर आप फेसबुक इवन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने स्क्रॉलिंग शुरू की, या टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग शुरू की, आपके ज़हन में ये था कि 5 मिनट फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ, बाद में ये काम करूँगा तो या करूँगी, और आप इस तरह हुआ कि आप उस स्क्रॉलिंग के दौरान अपना काम करना भूल गए, और स्क्रॉलिंग के दौरान ही आपको पता लगा कि 5 मिनट की जगह 1 घंटा हो गया। और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको वैसे तो यूके की ज़िंदगी इस तरह की है कि आपको वक्त की कीमत पता लग जाती है, आपको का एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, और मेरी नज़र में यूके आके ही मुझे वक्त की कदर पता लगी। और मैं सोशल मीडिया के नुकसानात में इसको इस वजह से शामिल करना चाहूँगा कि मैं अपनी बात करूँ कि जब मैं वैसे अगर मैं जिस दिन मेरा मूड ना हो फ़ोन यूज़ करने का तो मैं जल्दी सो जाता हूँ वापस आके शिफ्ट से, तो अगर इस तरह मूड मेरा मोबाइल यूज़ करने का हो तो हो सकता है पूरी रात गुजर जाए इसी चीज़ में, तो मुझे पता ही ना लगे।

और मेरी नज़र में सबसे कीमती जो चीज़ है वो वक्त ही है इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी ऐसी एक शॉर्ट सी ज़िंदगी होती है जिसमें इंसान ने बहुत कुछ ख्वाहिशें सोच रखी होती हैं और बहुत कुछ करना होता है। और हम स्पेशली हम जो मेल्स हैं उनके पर तो डबल ज़िम्मेदारी होती है। खैर आजकल तो इवन मैं कहता हूँ कि ख़वातीन भी इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, पर मेरे नज़र में जो मेल्स होते हैं उनको इस चीज़ का ज़्यादा एहसास होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में रख के करें। जैसे कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि इवन के इस तरह होता है कि एक ही रूम में अगर हम पांच बंदे बैठे हैं, पांचों अगर यही आज के कह लें कि 10 साल पहले की बात करेंगे, अगर हम पांच बंदे बैठे होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे से गप शप लगा रहे होंगे, कोई बात किसी की कर रहा होगा, कोई कुछ गप शप लगा रहा होगा, कोई हंसी मजाक की कोई बात कर रहा होगा, कोई कहानी सुना रहा होगा, कोई आप बीती सुना रहा होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सुना रहा होता है जो एक दूसरे को। और आज की बात की जाए तो हम एक ही कमरे में बैठे होते हैं, इवन कि हमें इतना अंदाजा भी नहीं होता कि साथ वाला बंदा कब उठ के गया, कब वो आया, कब उसने क्या कहा, कोई पता नहीं होता। हम अपने फ़ोन में स्क्रॉलिंग बस कर रहे होते हैं, बस मैं कहता हूँ कि बहुत ही बुरी चीज़ मुझे लगती है। और मैं हमेशा जब भी अपनी फैमिलीज़ में या किसी जगह जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि फ़ोन का इस्तेमाल कम करूँ।

हमेशा इस तरह होना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी से वादा करना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये वादा करता हूँ कि मैं हमेशा इतने टाइम के लिए अपना फ़ोन यूज़ करूँगा या सोशल मीडिया यूज़ करूँगा और अपनी फैमिली को भी टाइम दूँगा, क्योंकि फैमिली ही वो चीज़ होती है कि आपके एक, मैं कहता हूँ कि एक छोटी सी बात भी आपकी फैमिलीज़ के लिए बड़ी मायने रखती है, और आपका टाइम जो है आपकी फैमिली को बहुत ही एक पॉजिटिव वे में असरअंदाज होता है। और अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे तो इसके नेगेटिव असरात भी होते हैं, जिस तरह आपके बच्चों को आपकी कदर नहीं रहती, और आपके इवन के आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको अपने वालदैन की कदर या अपने उस्तादों की कदर मेरे हिसाब से इसी वजह से कम है कि वो इनको टाइम नहीं देते, उनको उनकी रिस्पेक्ट नहीं पता। क्यों नहीं पता? आप सोशल मीडिया में इतने मशगूल हो गए हैं कि आपको अपने वालदैन की रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, और आपको पता ही नहीं है कि किसी बड़े की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है। सोशल मीडिया की बात करें तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ये फ़ैसला किया था कि अब से मैं सोने से एक घंटा पहले फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसी आफत आन पड़े, माँ सवाए कोई ऐसी कॉल या स्पेशल कोई किसी का मैसेज हो तो उस वो सोशल मीडिया यूज़ करने का कोशिश किया करें। और आपको भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं कुछ के लिए छोटा होऊंगा, कुछ के लिए बड़ा होऊंगा, बड़ा भाई समझ गए या छोटा भाई समझ गए, ये एक बात अपने जहन में रखें कि कोशिश किया करें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने पॉजिटिव वे में करें, प्रोडक्टिव वे में करें। प्रोडक्टिव वे का मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ें सीखने के लिए करें। जिस तरह के एक भाई का मैसेज था कि हाँ, मैं मैसेज पढ़ रहा था, मुझे आप बातों से बातें निकली हैं तो याद आया कि उन्होंने कहा था कि मैं जो सोशल इधर यूके जब आया तो मैंने सोशल मीडिया से ही कुकिंग सीखी है, और मुझे पहले कुकिंग करना नहीं आती थी, और अब अपने रूममेट्स को कुकिंग सिखाता हूँ और खुद भी उनके लिए कोई खाना कुक करता हूँ और वो इसकी तारीफ भी करते हैं। मुझे अपना उनका नाम तो याद नहीं रहा, और अगर आप अभी भी सुन रहे हैं हमें तो मैं आपका मैसेज देख लें जी, आपका नाम तो नहीं मुझे याद रहा, माजरत, और आपका मैसेज मैंने साथ साथ बातों बातों में शामिल कर दिया है।

बातें तो बहुत सी हो गई हैं, और एक स्पेशल स्पेशल डेडिकेशन भी थी, और मैं फरमाइश भी थी, और ये फरमाइश थी, विश थी कि आप हमारे एक लिसनर की विश थी कि हमें मेरी एक स्पेशल वन पर्सन की बर्थडे है, और उसके लिए आप बर्थडे सॉन्ग भी प्ले करें और बर्थडे विश भी करें। तो ज़रूर करेंगे जी, आपको आप को बल्कि नहीं, आपके जो भी स्पेशल वन पर्सन हैं उनका आपने नाम मेंशन नहीं किया था, मैं आपका मैसेज बस दोबारा देखता हूं और उसको मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो सॉन्ग है वो भी डेडिकेट करूं और वो मैसेज भी पढूं। मैं ढूंढता हूं वो मैसेज किधर गया, मेरे जहन में आ गया। सॉरी फॉर लेट।

खैर मैसेज तो अभी मैंने मिल नहीं रहा, तब तक आपको एक स्पेशल सॉन्ग सुनाता हूँ, फॉर अ रीज़न बाय करण ओजला। और तब तक ये सॉन्ग सुनते हैं, अगर मैसेज मुझे मिल गया तो कुछ देर बाद मैं शामिल कर दूंगा। और सुनते रहिए फजा 97.1 FM, और मैं हूँ आपका होस्ट आरजे मौजम, और कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा, आगे होगी बहुत सी गपशप हैं, अभी बहुत से मैसेजेज अभी रहते हैं और बहुत सी आपकी बातें भी आपसे करना रहती हैं। और सुनते रहिए फजा 97.1 FM विद आरजे मौजम, प्रोग्राम का ड्राइव टाइम। So enjoy the music and please increase the volume.

वंस अगेन वेलकम बैक एर प्यारी सी आवाज़ के साथ, और प्यारा सा सॉन्ग था फॉर अ रीज़न, प्यारी सी आवाज़ थी करण ओजला की, और मेरी रा भी वन ऑफ फेवरेट सिंगर, पंजाबी सिंगर, और ये सॉन्ग मैं उनके साथ साथ डेडिकेट करता हूँ तमाम पंजाबी सिख ब्रदर्स को जिन्होंने ये सॉन्ग एंजॉय किया होगा, और मेरे रेगुलर लिसनर्स जो हैं उनको भी, और जो इस वक्त नए शामिल हुए हैं उनको भी, और मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। और आप सुन रहे हैं वंस अगेन फर्जन 97.1 FM, एंड आल्सो दैट जो है हर वक्त हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

और वैसे भी मेरे इस नज़र में ये रेडियो जो है, और ये ना सिर्फ एक रेडियो है बल्कि एक महफिल है जहाँ हर दिल गाता है और हर दिल अपनी दिल की बातें शेयर करता है। हो सकता है कि उनको भी उनके स्पेशल वन पर्सन ने स्पेशली ये कहा हो कि आप मेरे लिए बर्थडे विश करें, और मैं कहता हूँ कि ये एक महफिल है जहाँ हर दिल गाता है और मिलके गाता है।

जी तो मैं मैसेजेस पढ़ रहा था, आपके मैसेजेस पढ़ रहा था, ताकि एक स्पेशल सा मैसेजेस वो निकाला जाए जिसमें हमें कहा गया था कि स्पेशल बर्थडे विश की जाए, और वो मैसेज मुझे मिल गया है। और वो मैसेज किया था मिस्टर अली ने, और मिस्टर अली ने कहा था कि हमारी स्पेशल वन पर्सन के लिए प्लीज़ ये बर्थडे सॉन्ग को प्ले किया जाए, और आपको उनको बर्थडे विश भी किया जाए। और मैं फजा 97.1 FM की तरफ से और उनके तमाम टीम की तरफ से आपको के स्पेशल वन पर्सन को हैप्पी बर्थडे विश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपके स्पेशल वन पर्सन हैरियत से होंगे, और उनके लिए मैं स्पेशल सा सॉन्ग भी प्ले करता हूँ। एंड आफ्टर दैट सॉन्ग एक कमर्शियल ब्रेक आ रही है, और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे, और आपकी क्या राय है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से वो भी ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ हम सॉन्ग भी प्ले करते हैं उनके लिए, सॉन्ग हाँ, दिलजीत दोसांझ का सॉन्ग है जी, हैप्पी बर्थडे, और एंजॉय द सॉन्ग। और जिन जिन की आज बर्थडे है उन सबको ये डेडिकेट करता हूँ। अगर आपके भी कोई विशेस है, या किसी की बर्थडे है, या कोई वेडिंग एनिवर्सरी है, आप ज़रूर हमें उनका नाम बता के एक छोटा सा मैसेज भेजिए, हम उनके लिए भी प्ले करेंगे प्यारा सा बर्थडे सॉन्ग, और बर्थडे एनिवर्सरी विश करेंगे उनको।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

Once again, welcome back. और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM and also DAB. And program called Drive Time. आपकी बहुत सी मैसेजेस की रिक्वेस्ट आई थी कि बहुत से सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आई थी और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि आज का प्रोग्राम का तकरीबन आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है और इन दो घंटों का बहुत सी बातें हुई, सोशल मीडिया के फ़ायदे शामिल हुए, सोशल मीडिया के नुकसानात भी आपके साथ शेयर किए गए और आपको बताया गया कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या ना करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंसान के अपने हाथ में होता है कि उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करे या उसको नुकसान में या वैसे ही अपना टाइम वेस्ट करे। और मेरी नज़र में ये हम इस किस तरह यूज़ करते हैं, अगर आप इसके ज़रिए आप पेरेंट्स से बात करते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं, जिस तरह के स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट्स वगैरह या अपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सोशल मीडिया के ज़रिए या AI के ज़रिए करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो बात ही अलग है। अगर इसके अलावा आप सोशल मीडिया वैसे रील्स वगैरह देख के गुजारते हैं तो ये आपके लिए नुकसान है, क्योंकि ये टाइम ज़ाया होता है इसमें। और सबसे बढ़कर इसका नुकसान ये है कि आपको ये फैमिली से दूर कर देता है। सो लिमिटेड सा टाइम होता है, लिमिटेड सा टाइम है ज़िंदगी का और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसमें इस लिमिटेड से टाइम को इंजॉय करें और इंजॉयफुल बनाया जाए, ना कि बोरिंग बनाया जाए और आप ये ना हो कि इस चीज़ का इतना बुरा असर पड़े आपकी ज़िंदगी पर कि आपको उस पे पास में पछतावा ही रहे। और मैं आपको साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कोशिश किया करें कि अपने फैसले तब ही लिया करें जब आपका माइंड बिल्कुल कूल हो और बिल्कुल नॉर्मल हो। साथ साथ आपके मैसेजेस भी शामिल करता हूँ और क्योंकि टाइम इतना होता है कि हमने बातें भी करनी होती है, आपको इन्जॉयमेंट भी देनी होती है और आपको सॉन्ग्स भी डेडिकेट करने होते हैं, तो आपकी विशेस भी डेडिकेट करनी होती हैं आपको और बहुत सी ऐसे बातें होती हैं जो आपसे शेयर करनी होती हैं और आपसे भी सुननी होती हैं।

छोटे छोटे मैसेजेस हैं शामिल करूंगा, कोशिश करूंगा कि जितनी शॉर्ट हो सकें वो करूं, क्योंकि हमारी इजाज़त लेने का टाइम भी करीब तरीन आना है को है, और इसके साथ साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी तकरीबन हमने सारा ही कवर कर लिया है। और इसके अलावा मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने अपना होने का एहसास दिया और हमें अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमें दिया। अच्छा, मैं मैसेजेस पढ़ रहा था कमर्शियल ब्रेक के दौरान और मैंने देखा कि आज पंजाबी सॉन्ग्स की जो है ना बहुत सी डिमांड आई है, और पंजाबी सॉन्ग्स मैं कहता हूँ कि इवन के मैंने अब यह भी देखा है सोशल मीडिया पे भी इस बात हो रही, तो सोशल मीडिया की ही बात कह लूँ कि सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है कि पंजाबी सॉन्ग्स को इवन के जो इस चीज़ को समझते भी नहीं है इस के वो क्या बोल रहा है वो भी इंजॉय करते हैं, इसकी बीट्स ही ऐसी है।

अच्छा जी, सबसे पहले मैसेज ही हम अपने प्यारे से भाई हरदीप हरप्रीत हरप्रीत फ्रॉम लंदन हरप्रीत का शामिल करते हैं। और हरप्रीत कहते हैं कि सत श्री अकाल आरजे, प्लीज़ प्ले लवर बाय दिलजीत दुसांझ डेडिकेट टू ऑल पंजाबी म्यूजिक लवर्स। सत श्री अकाल हरप्रीत जी, क्या बात है जी। बिल्कुल, मैं कह रहा था ना कि दिलजीत दुसांझ की इन दिनों बहुत ही सॉन्ग्स हिट जा रहे हैं और उसके कंसर्ट इवन बहुत हिट जा रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूर प्ले करेंगे लवर सॉन्ग। और तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपका सॉन्ग हम कुछ मैसेजेस पढ़ के ज़रूर प्ले करेंगे। कोशिश करेंगे कि शॉर्ट्स आप प्ले करें ताकि जो जो डेडिकेशन जिस चीज़ की है वो सारी शामिल की जाए।

जी नेक्स्ट मैसेज है सिमरन का, और सिमरन फ्रॉम लीड्स, लीड्स हाँ लीड्स से। हेलो आरजे, प्लीज़ प्ले सतिंदर सरताज, सतिंदर सरताज सॉन्ग सजन राजी। एंड वो आल्सो लिखती हैं कि इट्स माय फेवरेट सॉन्ग्स एंड आई वांट टू डेडिकेट इट टू माय फ्रेंड। सो समरा थैंक यू फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ आप हैरियत से होंगी और मैं आपका भी सॉन्ग अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर लेता हूँ, और आपका प्ले सॉन्ग भी ये कुछ देर बाद थोड़ा सा प्ले करूँगा, और अगर पूरा ना प्ले कर पाऊँ तो उसके लिए माजरत, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और टाइम की हमारी जो गाड़ी 5 बजे हमारी गाड़ी शुरू हुई थी ट्राइब टाइम की, तो अब वो तकरीबन अपने मंजिल को पहुँचने वाली है। ले जी एक और दिलजीत दोसांझ का फ़ैन आया है और ये कहता है कि आरजे भाई लॉन्ग ड्राइव चल रही है, प्लीज़ प्ले बॉर्न टू शाइन बाय दिलजीत दोसांझ, पंजाबी सॉन्ग का अपना ही मज़ा है। जी बिल्कुल बिलाल, वाकई ये बात है कि पंजाबी सॉन्ग का एक अपना ही मज़ा है और इसकी एक अपनी ही बात है, और मैं कोशिश करूँगा कि ये भी सॉन्ग आपके लिए प्ले करूँ और आपको सॉन्ग ये डेडिकेट करूँगा, और अगर ना कर पाया तो नेक्स्ट शो में डेडिकेट कर दूँगा। टेंशन नहीं लेनी, बस आपने हमारी फैमिली के साथ जुड़ा रहना है। और ये नए आने वाले लिसनर्स जो अभी अभी शामिल हुए हैं उनको बताता चलूँ कि आप सुन रहे हैं फजल 97.1 FM, और थैंक यू फॉर ट्यून फजल 97.1 FM एंड आल्सो टैब। आपने भी मैसेज करने का तरीका वही पुराना है, और आपने ये स्पेशल डेडिकेशन देनी है अगर किसी को, या किसी को कोई विश करनी है तो प्लीज़ विश कर दीजिए, हम हाज़िर हैं, बस वक्त बहुत थोड़ा है। अच्छा जी, साथ साथ आपको बताता चलूँ कि व्हाट्सअप मैं नंबर भी बताता चलूँ, और व्हाट्सअप नंबर है हमारा 0115710097।

लो जी, बर्मिंघम वाले भी आ गए हैं, शामिल हो गए हैं अपने साथ और अपने होने का एहसास दे रहे हैं। और थैंक यू बर्मिंघम वालों। बर्मिंघम से भी बहुत से लिसनर्स हैं जो हमें रेगुलर सुनते हैं और अक्सर मैसेजेस करते हैं और ये एक्टिव रहते हैं। बर्मिंघम से हैं नाजिया, और नाजिया ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम आरजे, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर तुम साथ हो, दिस सॉन्ग इज़ आल्सो टच माई हार्ट। वालेकुम सलाम नाजिया, वाकई ये एक टाइमलेस क्लासिक है और फिल्म तमाशा का ये इमोशनल सॉन्ग है, और मैं कहता हूँ कि अरिजीत सिंह की आवाज़ हो तो अच्छी ना हो, ये हो ही नहीं सकता।

नहीं जी, बॉर्न टू शाइन से शुरू करते हैं और मैं प्यारा प्यारा सॉन्ग दिलजीत दोसांझ का लगा रहा हूँ और डेडिकेशन टू ऑल हु लव द पंजाबी म्यूजिक एंड पंजाबी सॉन्ग्स एंड स्पेशली फॉर आवर सिख ब्रदर्स। सॉरी फॉर, असल में क्या करें, हमारी गाड़ी तकरीबन अब उस तक पहुंच चुकी है कि अब जाने का वक्त करीब है, तो हमारी भी बैटरी तकरीबन 80% से 80% हाँ तकरीबन

आपके मैसेजेस नहीं पढ़ता, मैं मैसेजेस ज़रूर पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट शो में अगर कोई बात से बात निकल आए तो उनका मैसेज आ जाए तो मैं उसको साथ साथ लेके चलता हूँ। और मैं आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ आपको इन्जॉयमेंट के लिए आपके स्पेशल सॉन्ग्स भी प्ले करता हूँ। और इन्जॉय करें ये सॉन्ग, मैं थोड़ी देर में हाज़िर होता हूँ आपके साथ।

वंस अगेन वेलकम बैक, और आपसे इजाज़त चाहने का वक्त आ गया है। और मैं साथ साथ यही सॉन्ग प्ले करूँगा जितनी देर अभी है। और मैं आपसे माजरत करता हूँ अगर मेरी कोई ऐसी बात आपको लगी हो कि आपके दिल को उससे ठेस पहुँची हो। अगर ऐसी बात कोई हुई है तो मैं आपसे माजरत करता हूँ और आपका थैंक यू कहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और आप सुन रहे हैं दिलजीत दोसांझ को, और इंजॉय करें, और इंजॉय करें ही होंगे मुझे उम्मीद है। और आपसे मिलें, मुलाकात होगी कल, और कल हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मकसद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने

0: It's commercial time.
1: ओखाना काय के खुशबू गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: Get ready to move.
6: It's all about the beat.
7: Wow, FM.
8: Only tune Super Hit Channel.
9: Fizz on 97.1 FM.
10: Honi to se dam dil mera lagi jatti ni jadu
11: You are listening 97.1 FM.

0: Good evening, namaste, sat sri akal, and assalamu alaikum. You're listening to Raza 97 and the Renazal. I bring you the Angala every. Hello. And like I said, I'm bringing you the show every. Yeah. 7 till 9, but we're having a few issues. And we get the technical issues sorted.
1: Sri Akal, Namaskar, Adab. ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठी है। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनू कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: And with that, it's time for me to say bye. Hopefully you enjoyed that. We're going to give you back-to-back music for the next half an hour. And keep listening to Radio Fuzz on 97.1 FM. We'll be back with my show, Dil Diyan Gallan, next Thursday from 7 till 9. Allah Hafiz.
7: मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: महाराज।
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: बताओ हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा।
2: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रापता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।